ये जन्मों से आए पीटते आए वही दो लम्ब। दूर पीट पीट पिटी गए अब तो कोई शांत हो जाए चुप हो जाए। ऐसी एक प्यास जागे वो प्यास जागना ही बहुत बड़ा सौभाग्य। वो भी एक राजा में जाग जाए। अक्सर राजा लोग ऐसी रहते हैं वो उलझे रहते हैं। जितना धन होता है और जितना जिम्मेदारियां होती है उतने उलझे रह सकते हैं पूरा जीवन काल आखिरी दम तक उसी में उलझा रह सकता आदमी। मेरा नहीं तो मेरा बेटा, बेटा नहीं तो उसका बेटा, सबके बारे में सोचते रहो। एक बहुत बड़ा व्यापारी गया अपने मुनीब के पास अपने अकाउंट, अब बताओ हमारा कितना पीढ़ी के लिए है पैसा। उसने कहा अभी तो चार पीढ़ी तो आपके आराम से रह सकते हैं, आप कोई चिंता नहीं। तो बोले सिर्फ चार पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी की क्या होगी। चलो अब छोड़ो मेरे को भी बिजी होना है, पांचवी पीढ़ी के लिए कमाना है उसको।

0: अंत और काम बंधन का कारण होता है। असल में अर्थ और काम बंधन का कारण नहीं होता है, अपना ना समझी बेवकूफी होती है कारण। मगर हम समझते हैं अर्थ की वजह से, काम के वजह से हम बंधित हैं। इसलिए बोलना पड़ रहा है कि हमारा समझ ऐसा ही लगता है कि पैसे के कारण हम दुखी हैं। पैसा ना हो तो दुखी है, ज्यादा हो तो भी दुखी है। भोजन ना भी मिले तो भी दुखी है। और कोई और तुमको कहे कि भोजन करना ही पड़ेगा, तुम्हें ठूस ठूस के तुम्हें खिलाए तो भी दुखी। भाई नहीं करो, बस करो। और मन बहुत जल्दी अति में जाने लगता, अति जाने में बहुत आसान है। बहुत बोलते जाओ या बिल्कुल चुप हो जाओ, मध्य में तो चलना काफी मुश्किल।
1: नमस्ते आदरणीय श्रोता, आजको लागि द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृतधारा यति नै।

0: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
1: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
0: अध्यात्म ज्योति 104.8।

कर्म योगी आखिर क्या होते हैं, जरा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो सब

कर्म योगी को और समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है और इस त्याग की वजह से ही वो भगवान को हासिल कर पाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो कर्म योगी नहीं है, जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग, हमारे जैसे लोग कर्म के फल की ही इच्छा करते हैं और बस इसीलिए उसमें बंधे चले जाते हैं और कभी भी इस दुनिया के झमेलों से छूट ही नहीं पाते। देखा जाए तो दोस्तों, एक बहुत छोटा सा फर्क है इसमें। कर्म दोनों कर रहे हैं, बस फल से एक का लेना देना नहीं है और एक का बिल्कुल है, लेकिन इस छोटे से फर्क का नतीजा बहुत बड़ा होता है।

हमारा शरीर एक घर है जिसे नौ द्वारों वाला माना गया है। नौ द्वार जैसे दो आंखें, दो कान, दो नाक के छेद और इत्यादि। इन्हीं नौ द्वारों के जरिए हम बाहर की दुनिया से डील करते हैं। दुनिया का कोई भी काम बिना इन नौ द्वारों के पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसी घर में रहता हुआ सांख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हम सबके जैसे सारे काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वो एकदम अलग है। उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है और इसीलिए वो असल में कुछ नहीं कर रहा। वो कर्म में अकर्म को समझ चुका है। खुद को बस जैसे एक माध्यम मान के वो परमात्मा का काम कर रहा है।

आदमी का एक तो होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति। प्रकृति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है आप वैसे ही बर्ताव करते हैं। परमेश्वर न तो आपके कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है। इन सब का संयोग आपके स्वभाव की वजह से होता है। आपका स्वभाव विकृत है या विकसित है इस पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, आपके करने पर कौन सा कर्म होगा और उस कर्म के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा। इस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानिए दोस्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने तो मेहनत की थी लेकिन भगवान ने ही फल नहीं दिया।

सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे हमारे सामने लाने की देरी भर होती है। उससे 1-to-1 करने की जरूरत होती है दोस्तों। भगवान न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य, ये तो आपके ही हैं, तो भगवान का इसमें क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव, अपने नेचर के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं उसका नतीजा ही पाप या पुण्य होता है। आपके खुद के अंदर ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। उसी के चलते सारे बुरे काम होते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा।

जब अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता और प्रकाश होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है। जैसे ही हमें परमात्मा की सच्चाई समझ में आती है, जैसे ही हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है, वैसे ही एकदम से उजाला होता है। ये उजाला एक नए सूरज के उदय के समान ही होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, समझते हैं कि हमें सब पता है। वो गलत है। अरे, सबसे पहले यह स्वीकार करिए कि हमें कुछ नहीं पता, तभी रास्ता खुलेगा ज्ञान के आने का, वरना हमेशा ही अज्ञानी रहेंगे।

ज्ञान की बातें हो सकती हैं कि आपको बोरिंग लगे, फिलॉसफी या बकवास लगे, ये तो बस सोच है दोस्तों। दुनिया की सबसे सच्चाई को अगर कोई बोरिंग समझना चाहता है तो उसे कोई क्या कह सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, जिसकी बुद्धि उसे सही राह पे ले जाती है, जिसका ध्यान हमेशा उस परमात्मा में लगा रहता है, ऐसे लोग एक दिन कर्म के बंधन से, जन्म के बंधन से मुक्त होकर उसी परमात्मा में मिल जाते हैं और इसे ही परम गति कहते हैं। दोस्तों, ये कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल पाती है। क्या आप उनमें से एक हैं?

समदर्शिता यानी कि समान भाव रखना। जो पंडित और चांडाल को या गाय और कुत्ते को, गाय या हाथी को एक भाव से देख सकता है उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है। चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखता है। हजारों साल पहले जो कृष्ण ने कहा उस पर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं है। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर समभाव पैदा करना चाहिए। अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफी है।

कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके मन में समभाव आ गया उसने जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया। दोस्तों, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ना, उसमें ज्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ा नाम, शायद इसी को जीत माना जाता है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं मानते। उनके हिसाब से दुनिया को वो ही जीत सकता है जिसने अपने मन को जीता। मन के जीतने पर ही समभाव की सिचुएशन आ सकती है। वो पैसा किस काम का जो आपके मन में लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए समभाव ही ब्रह्म की स्थिति होती है।

जो पुरुष अच्छा होने पर खुश ना हो, बुरा होने पर परेशान ना हो, उसे ही स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है। स्थिर बुद्धि का मतलब हुआ जिसकी बुद्धि स्थिर है। कठिन हालात में जब फैसला लेना पड़ता है, उस समय आपकी बुद्धि अगर स्थिर होगी तो फैसला जल्दी और सही लिया जाएगा, और अगर विचलित होगी तो यहां वहां भागेगी तो फैसला भी देरी से और गलत आएगा। स्थिर बुद्धि ही आपके मन के संशय और शक को भी दूर करती है, और तभी आप बनते हैं संशय रहित, यानी डाउटलेस। दोस्तों, मन से शंका अगर दूर हो जाए तो निश्चय की स्थिति आती है। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मा। दोस्तों, मन से शंका अगर दूर हो जाए तो निश्चय की स्थिति आती है।

धन धान्य, खाना, अपनों का प्यार, महंगी चीजें, ये सब बहुत ही आनंद देती हैं। दुनिया की चीजों का मजा ही कुछ अलग है। इसीलिए तो हम हमेशा इन्हीं बाहरी चीजों को हासिल करने में लगे रहते हैं। अब अगर आपको ये बताया जाए कि कुछ ऐसा भी है जो इन सबसे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा आनंददायक है, तो दोस्तों क्या आप उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे? जी हां, भगवान कृष्ण की भगवद गीता वही बता रही है। बाहर की चीजों से ज्यादा जिसे अपने अंदर की बातों से ज्यादा आनंद आता है, सच्चा ज्ञानी वो ही है। उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं।

आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और उनके विषयों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, इन्हीं सबसे हमें सुख मिलता है। एकदम गलत। जी हां, एकदम गलत। हम ऐसा समझते हैं कि इन सब इंद्रियों के भोग से हमें सुख मिल रहा है। ना, कृष्ण बता रहे हैं कि असल में ये सब इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसको टेस्ट करने का भी एक सिंपल टेस्ट कृष्ण बताते हैं। कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है। इसलिए दोस्तों, इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते।

हम में से जो भी मरने से पहले इस शरीर के नाश होने से पहले ही अपने काम क्रोध को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। कृष्ण कहना चाहते हैं कि समय थोड़ा सा है, समय पूरा होने के बाद तो मर ही जाना है, उसके बाद फिर कोई दूसरी योनि मिलेगी, शायद कुत्ते की, पक्षी की, गधे की, घोड़े की, किसको पता। तो मरने से पहले ही अगर अपने मन पर विजय पा लोगे, अपने काम क्रोध से पैदा होने वाले भावों को संभाल लोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, वरना जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा।

जो बाहर के सुखों को छोड़ और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर अपने अंदर झांकता है, जो अपने अंदर की आत्मा को पहचानकर उसमें ही खुश रहता है, जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है, भगवान कृष्ण उसे ज्ञानी मानते हैं। बाकी तो बस हैं, और अगर वो भी नहीं होंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि सब कुछ छोड़ के संन्यास लेना है। अरे, कर्म तो करना ही है भाई, उसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं है।

जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके सब शक ज्ञान द्वारा मिट चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन अपना काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित होता है, वे पुरुष ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जैसे लालच में कभी शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है संतोष में, उसी तरह से बाहर की चीजों में जो आनंद है वो झूठा है। असली आनंद आपके अंदर है, अपने अंदर, मन में, दूसरों की भलाई में। जो इस तरह से अपने आप पर विजय पा लेता है और इन बातों के कहे अनुसार चलता है, उसी को अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है।

दोस्तों, ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने के साथ। लेकिन मन को कैसे जीता जाए? अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके। जब भी आप बेहद ज्यादा गुस्सा होते हैं तो आपको पता लगता है, बहुत ज्यादा प्यार में होते हैं तो भी पता लगता है। बस इसी अति को रोकना है। यही वो भावनाएं हैं जिनको नियंत्रण में लाना है। काम क्रोध पर तभी विजय पा पाएंगे जब मन में प्रण करेंगे कि विजय पानी ही है। सोचेंगे ही नहीं तो कभी कुछ होगा ही नहीं दोस्तों। और जिस दिन ऐसा हो गया तो सोच लीजिए, आपके अज्ञान पर से पर्दा हट रहा है और आप ब्रह्म के पास हो रहे हैं।

वैसा दुनियादारी को भूल, बाहर के विषय भोगों को छोड़ के, आंखों की दृष्टि को माथे के बीच में स्थित करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। ये एक माध्यम है ध्यान में जाने का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का। जिंदा रहने के लिए अपने आप सांसें तो सबकी चलती हैं, अपनों को औरों से अलग करिए दोस्तों। अपनी आती और जाती हुई सांसों को नियंत्रण में करिए, तभी आप अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत पाएंगे। तभी आप इच्छा, भय और क्रोध से छूट पाएंगे और इसी से ही आपको मुक्ति मिलेगी।

0: अपने कहे पर चलने वाले को कृष्ण अपना भक्त मानते हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय है। वो कहते हैं कि जो यज्ञ करता है और सेक्रिफाइस करके मेरे कहे पर चलता है, अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करता है, वो एक दिन मुझे ही प्राप्त होता है और मैं उसे प्राप्त होता हूं। दोस्तों, कृष्ण को आप भगवान भी मान सकते हैं या उन्हें आप शांति भी मान सकते हैं। उनके कहे पर चलने में हो सकता है आपको भगवान मिले या हो सकता है आपको शांति मिले, और इन दोनों अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन भगवान की सच्चाई मिल जाती है, उससे बड़ी शांति और कोई हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये था अध्याय 5। इसमें कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए बताया कि सन्यास योग और कर्म योग दोनों ही रास्ते भगवान की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कुछ विशेष है। इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की कड़ी है ये भगवद गीता। तो दोस्तों, अध्याय 6 में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।
1: आदरणीय श्रोता, यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता गीता ज्ञान। अब एकैछिन समयतर्फ ध्यान दिउँ। यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 8:30 भएको छ र अब एकैछिन व्यावसायिक सन्देशहरू।

0: गीता ज्ञान
1: भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग अथ षष्ठोध्याय आत्म संयम योग। दोस्तों, हमारे कितने ही जन्म हो चुके हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि इस जन्म में हम में इतनी समझ है कि अगर हम चाहें तो इस जन्म में भगवद गीता को सुन के समझ के ज्ञान हासिल कर सकते हैं। मैं शैलेंद्र भारती इसी ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा हूं। जय श्री कृष्ण।

श्री भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है, यानी अपने कर्तव्य को निभाता है, वही असली सन्यासी और योगी है। असली सन्यासी या योगी वो नहीं जो दुनिया को छोड़ के ये कहता है कि दुनिया के काम उसके लिए नहीं है। असली योगी वो है जो अपना निर्धारित कर्म, अपना कर्तव्य निभाता है। बस ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि कर्म के फल की आशा या इच्छा नहीं करनी है। फल की इच्छा करी तो वो स्वार्थ हो जाएगा। फल पर अधिकार नहीं, सिर्फ कर्म पर अधिकार है।

हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। सन्यास यानी कि कामनाओं का त्याग। अपनी कामनाओं इच्छाओं को तो छोड़ना ही पड़ता है, तभी उस सन्यास को योग कहा जाएगा। लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब कर्म को छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसे सन्यासी योगी नहीं माने जा सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म करते हुए जो त्याग करता है, कर्म के फल में अपना जी नहीं लगाता, उसे ही योगी कहा जा सकता है।

0: अस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते।
1: योगी सिर्फ वो ही हो सकता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में यह जरूरी है कि वो निष्काम भाव से कर्म करे, और जब वो योग के रास्ते पर चलने लग जाता है तो सबसे जरूरी होता है सर्व संकल्पों का अभाव, यानी कामनाओं का त्याग। आप में से कई को लग सकता है दोस्तों कि अगर कामना करना ही छोड़ दिया तो फिर जीवन में बचेगा क्या। परंतु सच्चाई यह है कि जब आप कामना करना छोड़ेंगे तभी असली जीवन शुरू होगा। करके तो देखिए, भगवान कृष्ण की बताई हुई इस राह पर चल के देखिए तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि जीवन क्या है।

कृष्ण कहते हैं कि जिस समय में योगी ना तो इंद्रियों के भोगों में अपना मन लगाता है और ना ही कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय में जब वो अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, तभी योगी होने की असली अवस्था में पहुंचता है। सबसे पहले आती है सोच, सोच के बाद सोचे हुए पर चलना, और सोचे हुए पर चलने के बाद उस रास्ते से भटकना नहीं, और फिर आखिर में लक्ष्य को प्राप्त करना। पूर्ण योगी बनाने के पूरे रास्ते को कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है।

दोस्तों, हम अपने ही सबसे बड़े मित्र हैं और अपने ही सबसे बड़े दुश्मन। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त या रिश्तेदार आपका भला या बुरा कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो दुनियादारी की बातों में आपको फायदा या नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। आप स्वयं ही अपने आप को इस दुनिया से ऊपर उठाकर ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको खुद को ही कर्मों के बंधन में से छूटने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मरते भी आप हैं और जीते भी आप हैं, और अपनी कोशिश से भगवान को भी हासिल आप ही करेंगे।

शत्रुवत। इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि हम में से कौन अपना खुद का दोस्त और कौन अपना खुद का शत्रु है। जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है वो अपने आप का मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है वो अपना शत्रु है। जो भावनाओं के आवेग में नहीं बहता और खुद पर नियंत्रण रखता है वो अपना भला करता है, लेकिन जो काम या क्रोध में उल्टा सीधा कर जाता है वो अपना कितना बड़ा नुकसान करता है ये आप समझ सकते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है दोस्तों।

सर्दी में या गर्मी में, सुख हो या दुख हो, जो एक जैसा ही रहता हो, शांत मान हो या अपमान हो, जो दोनों में एक भाव से ही रहता हो, ऐसे पुरुष को कृष्ण स्वाधीन कहते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट। ऐसे स्वाधीन पुरुष में ही सच्चा ज्ञान हो सकता है। अगर बाहरी चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारा बर्ताव कैसा होगा, तो हम डिपेंडेंट हो गए। हमारी स्वाधीनता बंधी हुई है बाहर की चीजों में। जब हम अपने आप पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो सब कुछ हमारे अंदर होता है। वो सच्ची आजादी है दोस्तों, परंतु हम में से ज्यादातर लोग गुलाम हैं। बस फर्क इतना ही है कि वो जानते नहीं।

जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है, जो किसी कमी को अपने पर हावी नहीं होने देता, जिसकी अपनी इंद्रियां अच्छे से जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। असली योगी मिट्टी और सोने को एक जैसा समझता है, लेकिन सोना तो बहुमूल्य होता है, तो सोने को मिट्टी समझना क्या नादानी नहीं है दोस्तों? जी नहीं, सोना बहुमूल्य है, लेकिन इस दुनिया के सुखों के लिए वो सुख जो असल में झूठे हैं, योगी पुरुष इस बात को जान जाता है। सूरिन् मित्रार्युदासीना मध्यस्थ द्वे

योगी की परिभाषा को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, जो सुहृद है, मतलब जो मन से सबका भला चाहता है, जो सबका दोस्त है, जो अपने दुश्मन से अपना बुरा चाहने वाले का भी अच्छा चाहता है, वही असली योगी है। अच्छे बुरे लोगों में भेद करना हम सबकी आदत होती है, लेकिन क्या सब लोगों को जज कर पाने में आप सक्षम हैं? नहीं। जो योगी होता है ना, वो किसी को जज नहीं करता, वो सबके लिए एक जैसा भाव रखता है। साधु को अच्छा कहना और चोर को बुरा कहना तो आम बात है, वो तो हम सब करते हैं, लेकिन योगी

जो अपने मन और इंद्रियों के साथ शरीर को वश में रखता है, जिसने अपने मन में आशा को खत्म कर दिया है और जो कुछ भी संग्रह मतलब कि इकट्ठा नहीं करता, वही योगी है। उसे अकेले ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, जमा करना हम सब की आदत है। जिस तरह से जितना पैसा हम जमा करते हैं ना दोस्तों, उसी तरह से अज्ञान और पाप भी जमा होता है, जिसका के हिसाब एक दिन तो देना ही होता है। योगी समझदार होता है, वो दुनिया से दूर होकर अकेले में भगवान को याद करता है।

इस श्लोक में कृष्ण ध्यान में कैसे बैठें उसका तरीका बता रहे हैं। साफ सुथरी भूमि पर घास का आसन या मृग छाल या वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए। यह आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचे। महाभारत के समय से आज के जमाने में बहुत बदलाव आया है। घर अब वैसे नहीं होते जैसे पहले होते थे, लेकिन मेडिटेशन का तरीका तो नहीं बदला ना, और ना ही कभी बदल सकता है। आसान और साधारण होना चाहिए, जगह साफ होनी चाहिए, साथ में आसन ऐसा ना हो जो ऊंचा नीचा या हिल रहा हो, अर्थात स्थिर होना चाहिए।

साफ जमीन पर एक समतल आसन पर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान चाहे ईश्वर का कीजिए या अपने हृदय का। इरादा होना चाहिए कि बाहर की सारी डिस्टर्बेंसेस से आप बच के खुद के अंदर झांकें। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। मन को एकाग्र चित्त करके और हमारा मन जो हमेशा इधर उधर भागता है उसे नियंत्रण में रखना है।

0: झीले यहाँ सुंदर यूनुंचा एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

था तुमसे कल भी सामना कल तो जानोगे दिल वाला नाजीज है कोई तब तो मानोगे होगा तुमसे कल भी सामना।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नु हुनेछ।

0: मैं और मेरी
1: ये प्यास क्यों नहीं बुझती?
2: बता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
1: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है?
2: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: 18 30 007।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित पसीना सोचने हलुका टिकाऊ र मुलायम
3: राधा कृष्ण ज्वेलर्स विशाल बजार पसल नंबर 13 न्यू रोड काठमांडू राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सधैं भरि।
4: One oh four eight.

0: ಪಾವೆಲ್ ಸುಚ್ಚೆಪಾಟಿ.
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: हे हे,
2: हाय हाय,
1: बाफ रे बाफ,
2: वाव वाव,
1: जाऊ न जाऊ,
2: आऊ त आऊ, श्रेष्ठ टेलरिंग,
1: या बेबी या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।
4: FM AJ 104.8 megahertz.

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू। कम्फर्टेबल।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति, शांति रेडियो।

सद्गुरु प्रवचन श्रृंखला अन्तर्गत एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन माला कार्यक्रम अमृत धारा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड।

शरीर मैला होता है तो साबुन से धो लेते हो, पानी और साबुन से शरीर का मैल दूर करते हैं। इसी तरह से प्राण भी गंदा हो जाता है। पांचों विषयों के भोग, किसी भी भोग अधिक करोगे तो प्राण जलता है। प्राण जल जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए प्राणायाम की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब भी प्राणायाम करते हो, सुदर्शन क्रिया करते हो, ऐसा लगता है कि कुछ पवित्र हो गया अंदर से। कितने लोगों को ऐसा अनुभव होता है, प्राण जला हुआ, प्राण भोग में जल जाता है, वो प्राण शुद्ध हो जाता है। प्राण शुद्ध होता है वैसे भक्ति से, कीर्तन से मन शुद्ध होता है। पूरे भाव से जब गाते हो या भजन सुनते हो, वो भाव से मन शुद्ध हो जाता है। होता कि नहीं, कितने होता है? और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती। इसी वक्त जाग के देखो, ये जो कुछ भी दिखता है ये कुछ सत्य नहीं है। ये सब नश्वर है, ये सब खत्म होने वाली है। तो अपने ही चेहरे को शीशे में देख लो, दो मिनट के लिए बोलो कि ये तो चेहरा सब ऐसे भस्म हो जाएगा। बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इसमें कुछ भी नहीं, राख ही राख है। जिसको हम शरीर करके समझते हैं, कुछ भी नहीं है, परमाणुओं का एक संग्रह है। और एक दिन ही तो बिगड़ जाएगा, राख हो जाएगा। जो कल हो जाएगा वो अभी हो ही गया, अभी है ही वो। फूल करके कली बेचते हैं लोग, फूल ही कहते हैं मगर बेचते हैं कली। क्यों? जो फूल बेचने वाले के तो वो तो कली तो खिली गया। तो ये शरीर राख ही है। इसी को याद दिलाने के लिए भस्म लगा देते, हाथों में, गले में, माथे में, पूरे शरीर में भस्म लगा देते। देखिए ये तो राख कल होने वाला है भैया, तो हो ही गया। यदि देहं पृथक्कृत्वा चित्ते विश्राम्य तिष्ठति, अष्टावक्र जो कह रहे हैं, इस शरीर को तुम अलग कैसे करोगे? जब तक इसकी सत्यता को मानते चले जाओगे तो ये राग हो जाने ही वाला है। कुछ सुख की संवेदना, कुछ दर्द और दुख की संवेदना इसमें उठ रही है। जो भी हो रहा है, ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये राग हो जाने वाला। ये ज्ञान उपजते बुद्धि शुद्ध हो जाती। शुद्ध बुद्धि में ही आत्मज्ञान संभव है। अक्सर लगता है जब ये सब छोड़ना ही है फिर करते क्यों है, सत्संग क्यों करे, प्राणायाम क्यों करे, ये सब करने कराने से तो कुछ होगा नहीं। नहीं, ऐसा तर्क नहीं चलेगा, ऐसा तर्क से नहीं काम होएगा। इन सब से बुद्धि शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है। कई बेवकूफ ना समझी लो कि बेवकूफ ना समझ लो क्या करते हैं, अरे शरीर को तो साफ क्या करना, ये तो गंदा है, ये तो एक दिन मरने वाला है, पड़े रहने दो। गंदे कपड़े पहनना, बिना नहाए रहना,
इस तरह से जीवन जीने लगते, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी जितने हिप्पी वगैरह ये लोग हैं जटा बना के अपना पता नहीं बाल में कितनी गंदगी, बाल नहीं साफ करते, कीड़े मकोड़े सब बसे रहते हैं। ठीक है कीड़े मकोड़ों के लिए एक जगह चाहिए तो ठीक है, मगर उसको फैशन करके समझ करके जो करते हैं ये ना समझिए, मगर बाकी उनके आसपास रहने वालों के लिए दिक्कत हो जाती है। शरीर तो राख बनने वाला ही है, फिर इसको क्यों साफ कर रहे हैं? ये तर्क नहीं चलेगा। स्वच्छता, जहां सफाई होती है वहीं पर ज्ञान उपजता है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, मैं परब्रह्म हूं, ये ज्ञान उपजना हो

ఏరెగేరె నత్తుకొని జనక్ని సాధాయి. జనక్ని చాహ జాన్నా, జాన్నే కి చాహ భీ శుద్ధ బుద్ధి కి హీ ఏక్ పహచాన్ హై. आप अपने आप को यहाँ जनक से कोई कम नहीं समझो, जो जानने की चाह से तो आके बैठे हो. सब छोड़ के मैंने बस जानना है मुझे, ये प्यास जागी है आके बैठे हो. जान रहे हो इसलिए मत सोचो अरे जनक हो सकता मैं नहीं हो सकता हूं, ये नहीं चलेगा. प्राण की गहराई में, भाव भाव की गहराई में बोध, शुद्ध सत्व शुद्ध तत्व इसकी गहराई एक के अंदर एक है. शरीर स्वच्छ हो प्राण स्वच्छ है, प्राण स्वच्छ है तो मन स्वच्छ है, मन स्वच्छ शुद्ध भाव, भाव की गहराई में होश. ये परत दर परत है, किसी एक परत में भी पवित्रता आ जाए बाकी में वो अपने आप फैलने लग जाता है, आने लगता है. भाव इतना हमारा कोमल हो, तरल हो, गदगद हो, हमारी सांस की गति भी बदलने लगती है उसके साथ साथ. हमारे ये पूरा संसार और शरीर का ये जो समूह है ये जुड़ा हुआ है. सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, दूसरे व्यक्ति में जो होता वो भी तुम पर असर करता. सत्संग के महत्व यही है कि हर व्यक्ति के मन में ऐसा भाव है, वैराग्य है या जिज्ञासा है तो सत्संग बनता है. लोभी लालची के साथ बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी वही लोभी लोभ और लालच के ख्याल आने लगते हैं. होता है कि नहीं होता? हाँ, तुम बताओ कितने लोगों के ऐसा होता है. देखो तुम्हारे भीतर बोध जागा है, तुम मजबूत हो तो तुम्हारा असर उन पर होता है. आपने सुना ही होगा विक्रमादित्य की कहानी. एक टीले पर एक माली एक टीले पर खड़ा होकर के सबको निमंत्रण देता था, सब आओ भाई आओ हमारे इस बगीचे में, इतने फूल है इतने फल है, सब आओ ले जाओ खाओ खुश रहो. तो लोग आते ही वो नीचे उस टीले से नीचे उतर के आता तो फिर डंडा लेके सबको भगाता था. तुम्हारे विचारों में उसकी कई गुना अधिक शक्ति है. हम अपने मन में नकारात्मक विचार पालते रहेंगे, पनपते रहेगा वो, फिर उसी का प्रभाव संसार में पड़ेगा. तुम नकारात्मक होगे, तुम्हारे दोस्त होगे और तुम्हारे साथ बैठने वाले सब होगे और सब के सब एक ही राग में एक ही सुर में गा रहे हैं, अरे जी सब ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है, सब ऐसा है, सब ऐसा है. भाई बदलो अपना रुख को, अपना रुख को बदलो. इस संसार तुम्हारा ही है, तेरी ही आत्मा का विस्तार है. इसका मतलब ये नहीं कि जब कोई खराब है ये नहीं करना कि खराब है. चावल कच्चा है पका नहीं, देने बहुत अच्छा चावल देने की नहीं जरूरत है, कच्चा जहां है कच्चा बोलो. पर जिस भाव से तुम व्यवहार करते हो समाज में, उस भाव में, भाव की गहराई में यदि नकारात्मक का पकड़ आ जाती है तो तू मुरझा जाता है. ताकि तुमने अपने जड़ पर, अपने मूल पर तुमने जहर डाली, अपनी ही जहर, दूसरे

या चराया नहीं, किसी का चेहरा खिला है किसी का चेहरा मुरझा क्यों है? तुम अपने ही खेत पर अपने ही मूल पर जड़ पर तुमने नकारात्मक डाल दिया चिंता। ये चिंता ऐसी चीज है, चिंता को मिठाना तो भाव में, इसीलिए शरणागति की इतनी महत्व गाई गई। और क्या, तुम्हारी शरणागति से ही खुदा को, ईश्वर को, भगवान को, गुरु को, किसी को कुछ मिल जाएगा? खास मिलेगा, परेशानी ज्यादा होगी। तुम शरणागत होगे तो तेरा मन शुद्ध होगा, तेरी भावना शुद्ध हो जाएगी, तू खिल जाएगा, वहां जो भी जहर पड़ी है वो सब अमृत हो बन जाएगा, तेरी भावना सकारात्मक हो जाएगी, शुद्ध भाव हो जाएगा। नकारात्मक भावनाएं पत्थर जैसे तेरे ऊपर चढ़ जाती है, सकारात्मक भावना तेरे को फूल बना देती, यही फर्क है। नकारात्मक भावना से दुख झेलते जाओगे, सकारात्मक भावना से सुख की खुशबू तुम फैलाते जाओगे, वह तुम्हारा स्वभाव है। यही अष्टावक्र कहते हैं, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोदस्वं सुखं चर। अरे भाई, तुम आनंद से बने हुए हो यार, क्या तुम किस चीज को लेके तुम परेशान है? भौतिक एक जो प्रोजेक्टर के पीछे बैठा हुआ आदमी सिनेमा के लिए, सिनेमा जो दिखाता है वो पर्दे में प्रोजेक्टर से चित्र चलता है, मगर जो पर्दे वो प्रोजेक्टर के पीछे जो आदमी बैठा रहता है उसके लिए ये सिर्फ सब एक ही रोशनी पड़ रही है पर्दे पर। अब वो रोशनी वो फिल्म के जरिए पर्दे पर जा रही है, फिल्म में जो भी है वो प्रोजेक्टर के पीछे जो आदमी बैठा रहता है उसके लिए ये सिर्फ सब एक ही रोशनी पड़ रही है पर्दे पर। अब वो रोशनी वो फिल्म के जरिए पर्दे पर जा रही है, फिल्म में जो भी है वो सब एक ही है उसके लिए। एक अच्छा निर्देशक के लिए रावण भी राम भी, जो भी अच्छा करता है उसका स्वभाव उसका व्यवहार उनके साथ एक ही होता है। उनसे उनका मतलब है सब अपने अपने पात्र अच्छे से करें। जब हम एक बार कनाडा गए थे, वहां भारत का स्वतंत्र दिवस का मनाने का एक रहा था, और भारतीय मूल के एक महिला ने रामायण का एक दृश्य के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी। छोटी सा एक छोटा सा समुदाय था, भारतीय समुदाय, कोई 100 फैम परिवार होंगे वहां के, तो बच्चों को सबको लेकर के इनको ट्रेनिंग दे रही थी। और वो हमारे पास है गुरुजी, बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को रावण का पात्र नहीं कराने दे रहे? रामायण का जब वहां हमने देखा, मुझे ताजुब है, जो राम है वो बिल्कुल जैसे रावण जैसा है, हड्डे कट्टे काला मोटा सा। रावण का पात्र कह रहा हूं बिल्कुल दुबला पतला कोमल, बिल्कुल छोटा सा लड़का, सदका

0: उस महिला ने कहा, मैंने उसे पूछा भाई ये क्या है, तुमने ऐसे पात्र क्यों चुना? बोले गुरुजी मैं क्या बताऊं, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को रावण कुंभकर्ण नहीं बनने देना चाहते थे, फिर मैंने अपने ही लड़के को बनवाया। ये तो सिर्फ रामलीला है, पात्र करने में भी लोगों को दिक्कत होती है। इतना तादाद हमने अपने आप से जोड़ लिया, एक वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से तादाद कर लिया, पात्र से तादाद कर लिया कि तेरी भाई जाके देखो तुम आनंदम परमानंदम, तुम आनंद स्वरूप हो, अणु परमाणुओं से बना हुआ यहां सब। इस चीनी का ही शेर है, चीनी का ही बिल्ली भी चीनी का है, चूहा भी चीनी का है, जो भी ये सब चीनी के खिलौने हैं, ये सब मिठाई में बनाते हैं ना अलग अलग तरह से, बनी एक ही चीज से। तो बिस्कुट में वो बच्चे का खाते ना, एनिमल बिस्किट्स होते हैं, जानवरों के बिस्किट। मैं बिल्ली खा रहा हूं, मैं ऊंट खा रहा हूं, हाथी खा रहा हूं, तो कुछ भी खाओ वो एक ही चीज है। बनी सब कुछ एक ही चीज से, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शाकाहारी तो मैं मांसाहार करने लग जाऊं, सब एक ही चीज, सब आनंदम परमानंदम, ये बेईमानी हो नहीं। फिर ये भी कहना पड़ेगा सुख आए दुख आए वो भी सब एक ही है। कि शुद्ध ज्ञान और व्यवहार ये दोनों को साथ साथ लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ व्यवहार में ही उलझे रहोगे कि जीवन का लक्ष्य गुम हो जाएगा। शुद्ध ज्ञान है जीवन का लक्ष्य और उसको जीवन में विनियोग उपयोग अपने आप होने लगता है उसका।
1: हवस्ता आदरणीय श्रोता, आजको लागि द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा संचालित यो कार्यक्रम अमृत धारा यति नै।